0: Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation द्वारा संचालित Community Radio Association द्वारा निर्मित
1: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।

तेरे मंजिल की, वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का साथ है, मिलने की याद है, तू क्यों उदास है।

प्यारी प्यारी मगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूएं छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूएं छुपाए मोहब्बत नसीब।

0: बधाई है बधाई है, आज राम जन्म की बधाई है बधाई है।
1: भर भर के कनक थाल, भर भर के कनक

0: राम के मन में सीता का ध्यान,
1: प्राणों की आरती, प्राणों की आरती जलाई है जलाई है।
2: आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है। आज राम जन्म की बधाई है।